अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका।

0: Roll camera and action!
1: अरे वो लोग कुछ शूट कर रहे हैं।
2: हमारे बिना शूटिंग कैसे कर रहे हैं?
3: ये तो अपना गाना। या कम ऑन, बाल की शूटिंग हमारे बगैर?
4: Thank you.

नहीं मरना गवारा प्यार में, तुमसे ये कहना है, तुम्हें भी जिंदा रहना है, मुझे भी जिंदा रहना है।